वह मीना ये जीवित मद गुज गई है अगर नमस्ते के जीवित मद जो है निगनो पिटिगनो स्कंदिस नुच मिच गई है तो इस बाह को जी दिख तक जी गया कई गवी तागनो सुतन हाँ में टेग मी यस एक ताई बस आई एतुक संताई बेग इसको दे जी गया मगा के नागत तागनो है कि स्वी तागनो जी गया एक हुआ ही वाप जी गया जित स्वी तागस गया ही है एवा वीत मच गया दानस नाको गया मेस्कनो दे इताया गया ही दम को मेस्कनो एगन है कि जित स्वी तागस गया जित एवा वीत मच गया आई New meskno ke dana snakko, egunen ni kawi wit madatskia. Aya o dey deche uchebugmo, give de hi deche uchebugmo ga nista mai ha, dey deche kapsisid lodge. Aya egunen spadoda.

वह मीना ये जीवित मद गुज गई है गनो मस्ती के जीवित मद जो है निगनो पिगनो स्कंदिस नुच मिच गई है दन से बाह को जी दिख तक के के गवी तक नो सो तन हम टेक मी यस अ गुड टाइप बेस आई ए टुक सेंटर बिग इस को देज के आ मगा के नना के स्टाग नो है गस वी तक नो चके ए कु आई वाप चके दि दि स्वीट आस के आई है ए वा वी तमच के दन स्ना को के मेस नो दे ई टायो के आई दम को मेस नो ए गुन है गो विच दि स्वीट आस के ए वा वी तमच के आई new meskno ke dan snakho egun ne ka wi wit madatska ay de de che uche bugmo ha give de hite che uche bugmo ga nista mai ha de che capsi sid lodge ay egun as badu da gno ay ha uche cre social economy regional table egun ne jis batos gutos de shana ne special jo dak se de che capsi sid lodge ne begun tips haj ge ga te che danoch ga egun de che east main ay ha We are just scoped that is great. Jagger niche and east now. A speech gag then that's Bataus gag the east main. When such a jibin bit also gab, Tunio, Nanako gag, east and doitic, did you say, which hagenod, maget, it's good morgano, Dagonish Nakto have banatic noco, eat that one gag. Eto Dagonoska megots, a quay agon head, eat nanoska and you say, Doja Bogomo gag the east main. Jin scum nogant to mega, Winchgog, go once to go there, Aptadishgat got into the mega here. Winchgog and I knew it's Kumaga, Charles. I looted the Kabadad near the Bajmonio. Jimmy Ubiag, Wajem Sweat, Nee, Bitsy Longchap.